0: गुण नाम सुनने को ओंकार सुंदर प्रसाद पुतार का सेद सप्ता पसे दस प्रकार प्रकृति इच्छा में सब लोग इच्छा में सर्व काज दी इच्छा में सब लोग दी सदा इच्छा हमने बंधन मही पिजल तल बहां जते प्रसो कुड़ारीदा जगमग तेज प्रेम प्रताप अमृत में जय जप जाप सातो आकाश सातो पतार पितृ अदृष्ट जे कर्मचार उस तत्व संपूर्ण
1: सलाह महला पहला पे पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नित समय एक चलन चढ़े एक ने हाली पै सवन एक परान खड़े तेरा सारे नानक जिनको नजर करे महला दूजा
0: आपे सज करे आप जाए

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी भावना स्थान सतखंड दरबार की हाजरी भरते हुए आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारियां वालों शब्द भेट माया हाजिर हुई है सच्चे पातशाह

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हारी गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास कर करत है खूक मड बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सदैया ताए ही जिकी बडैया दे बंदरा सदीव बाय नंग फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैस के तरत है भूत बन चारी छित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के भजैया धन लोभ के तजैया ते तो कौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उडयता है पंछ की बटैया देत ब गुलाब डाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तेनो जानी प बखानी ना है असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे हूजरी गजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है फल के भचैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि से फिरैया ते तो भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के भसैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन चारी दिखी के स नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस गो बथैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगतकाल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जो कि जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधो मुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पाव वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाजद फिरत मोर बांदर करत होर दामनी अनेक भाव करो ही करत है चंद्रमात शीतल न सूरस दे तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्यात ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है मोन दी मदार किते असुनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है वीर ओ पिकांबर किते गाने न परत एते भूम ही तहे के फेर भूम ही मिले है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को तलत है मान से महीम ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस पोसती अनेक दानी वावत है शीस को कहा भय मल्ल जप काढ़त अनेक दंड सो तो न दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो पे डर रहो उर्ध मुख मान तेना मूड निहो रायो आद ईस को कामना अधीर सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शीस पटकत जाके कान में खजूरा धस मूड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सो आंख को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सो कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षण सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जो को

करत शोर सदा घन घोर घन करियो करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत, ब्रिज फूक फूक बाहुम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे, काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया वरागी, बने का बहू संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी, कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत है नाचन, सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीतकाल, कुंजर उगत हा अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो, कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग डार, दार दार फांस टक मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई तापनाथ, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के गीत जो पे पायत, जाप देव भूतना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत रांड भी रांड की परत कर, पताल के बास की भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को, जो कि भयो को ब्रह्मचारी को, जति अनुमान वो हिंदू तुरक को, राम जी इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान वो। करता करीम सोई रास करहीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही की सेव सब ही को गुर देव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहुरा मसीद सोई पूजाओ निवाज, ओई मानस सब एक बयान एक को भ्रमाओ है। देवता देव जश गंधर्व तुरक, हिंदू न्यार न्यार देशन के

कोई, एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वछ हो सब पच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पछ को करेंगे भज, के तक व्रत अच हो।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रेन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गढ़त कित सुह पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित पप तप

जातंगद वेखंग फेखंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट गोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परे अंग परा परम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूप अखंड प्रतापाद अक्षय विभूत न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न विद्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नरायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नीय छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग प्रापालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा से

कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच्छ गंत्र विघ्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश वाक्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ विंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं।

कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कहे सिमृत साथरथ उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ ऋद नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई बजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदप तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दिश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर।

पर यह है पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, गरीब है, कुरान है, अकाल है, अबाल है, ख्याल है, खंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न फंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न चित्र है, न चित्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत तेज जानिया, भूम विज है, सदा छिज तेज मानिया, न आध है, न प्याद है, अगाद रूप लेखिया, दोग है, अदाग है, अच्छे प्रताप पेखिया, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोकार है, न आध है, न गाध है, न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपसदा, अगस्त आद जे बटे तपस्तपि विशेखिय, बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ पेखिय, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए, सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल मैर है, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है,

दुष्ट गंजन सत भंजन परम पुरख ब्रह्मनाथ, दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जिह गाथ। भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज, आद अंत अनाद श्री पद परम पुरख अभंज। धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार। भूमा का जले थले महिमानिये जिह नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल कुबिंद, मित्र पालक सत्र गालक दीन दयाल मुकंद। अघाव डंडन दुष्ट खंडन काल हो के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीन, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्वभरता आद रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड, भूम का जले थले मह जपत जाप मंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए समचार, आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेवना पावै शिव रुद्र ओमुख चार। कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भेमुख चार। आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये तेह पार। नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके सकुंतरव नाच पछर पार, सोत सोत थके महासुर।

कहो सुसम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो दंत को मंत दोहरा। कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोकी रागी कवन कहो तंत मोह तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ शिष्ट को विचार कवन रिशिष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चेतन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ

दान भय अनंत तौ कहो जथा मत त्रैण तंत। कर्ता करीम कादर कृपाल अतव अभूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जिह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रूप सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहल सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज अदाग। जल थल महीब बंतन दुरंत जय नेत नेत निषदिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निषदिन उचरंत।

पाप सम्भू हन फेट न पावे। और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काल पताल रसातल जच भुजंग सब सिन्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बचहारे। भेद न पा सक्यो अनभेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग तिहारे। आदा नाद अगाध बेगत वेख जप्यो तिन ही कुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरे कर फेस तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोहन्यास करे मुकारे। दीन दयाल काल भजे बिनांत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कवित अत्र के चलैया छित छत्र के थरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर गर देज गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना कि तेक बांधे। अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फराके फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने। पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेरे तेरी मन सो तपस्या करे। दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाले। दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर। बंग सी बुंदेले पाप बुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे। ते बत दे आए दुख देह के दलत है। जिने दोहे जायो तिने पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल संफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश। गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे बहुचात है। चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार। केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते सस राशि केते सूरज प्रकाश। केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण। केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते है विचार पैना पूर्ण नगो पावे। बारता हित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार। पाई है न पार पै अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है। अनासी कह के मानी है। जंत्र हूँ न जात जाके बाब हूँ न मायदा की। पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है। निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को सर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है। कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है।
रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के श्री है नर है विश्व को भरण है के अपता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार वार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमाल का वह बसी हल विधा वह पूर्व बिना पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवना तद्वय विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीर है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाछ कैसे छतरा नेर छप आकार कैसे छप कालिंद्री के कोल के हंस निश सिंहारो मही राशि हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सात सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसासी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलबानेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधर बकान सी बिरंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के तुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी गोर गखरी गर्द जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप ओ कमाओ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेता बिना

रूपे सदा अंग संगे अपंग अंग विभूते देख तेगो फतेह नुसरत बेदरंग आप तज अज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्रीकार पुरज सहाय दरबार में तुर दरबारा सच खंड वसै निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सर्व

भैव चगन कडै बेगार भैव च धरती दबी भार भैव चिन्ह फिरै सिर भार भैव च राजा धर्म दुवार भैव सूरज भैव चंद कह करोड़ी चलत न अन्न।